वचन ये कहता है, ये सांसें हैं किराए की, ये जीवन है दुआ, जो बटोर रहा है तू सब रह जाएगा यहाँ। मगर जो प्रेम प्रभु का दिल में बसा ले, मगर जो प्रेम प्रभु का दिल में बसा ले, वो कभी खाली नहीं जाता यहाँ।

अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा भरुणाल परात्पर पर ब्रह्म हो। श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथारसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। मैं आपकी लोकेश नहीं जितेंद्र पारासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को।

बड़े आनंद चित्त होकर के आप और हम जहां भी रहें भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे। इस चराचर में जो भी हमें अच्छे कार्य हो रहे हैं सब प्रभु की प्रेरणा है, सब हरि की इच्छा है, सब प्रभु की प्रेरणा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति यही कहता है कि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं, और बिल्कुल सत्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान मेरे साथ में ऐसे क्यों कर रहे हैं। भगवान इसलिए कर रहे हैं कि आपके किए हुए जो कुकर्म है उसका जल्दी प्रायश्चित हो जाए। इस संसार में रहिए, इस संसार में मस्त रहिए।

खूब कमाइए, खूब धन अर्जन करिए, मौज मस्ती खूब करिए, लेकिन भरोसा कभी ईश्वर से आपका छूटना नहीं चाहिए। जिस दिन ईश्वर से आपका भरोसा छूट जाएगा ना, आपका धन दौलत संपत्ति हीरे जवाहरात सब बेकार हो जाएगा। कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन हरि के ऊपर भरोसा करके, परमात्मा के ऊपर भरोसा करके यदि हम अपने जीवन को यापन करते ना, तो जीवन पावन हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसी के लिए संसार वाले लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, भरोसा रखिए लेकिन कब बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ईश्वर कभी बदलेगा नहीं, आपके सहायता देने के लिए उत्तपर अहर्निश अपनी सेनाओं को लेकर के, अपने परिकरों को लेकर के व्यस्त रहेंगे, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को कभी दुखी होने नहीं देता। सोचता है कि मेरा बेटा खूब अच्छे से रहे, खूब बढ़िया से रहे, इससे कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसके जीवन में अहर्निश, इसके जीवन में अहर्निश हमारी कृपा बनी रहे। परमात्मा तो हर एक चाहता है, लेकिन जीव ईश्वर के ऊपर से भरोसा करना छोड़ देता है। अरे मैं हूं ना, सबसे बड़ा दुख का कारण यही बन जाता है कि भरोसा न करना। ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके कोई कार्य किया जाए। जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसी के लिए सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz के तरंग के माध्यम से आप जुड़े हैं। ईश्वर की भक्ति हम सबों के ऊपर बनी रहे, हम सबों के ऊपर बनी रहे, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा। एक बार देखिए, भरोसा यदि हो ईश्वर के ऊपर तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आकर के आपको सहायता करते हैं। विश्वास और भरोसा तो होना ही चाहिए। एक छोटी सी गांव में रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। भगवान शिव का बड़ा भक्त था। ये नियम था उसके कि प्रत्येक दिन नियमानुसार से कोई कार्य हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नियमानुसार से भगवान शिव को जाकर के जल अर्पण करता था। घर में कोई खर्ची नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, फिर भी रखता कि प्रभु भले घर में खाने के लिए नहीं, लेकिन जो शेष समय बचेगा उसमें हम कमा करके घर का लालन पालन कर लेंगे। पूर्ण भरोसा था। रोज शिवलिंग पर जो है जाकर के जल चढ़ाता था, रोज शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाता था। क्या भगवान से उसने धन मांगा, संपत्ति, हीरे जवाहरात? नहीं, भगवान के समक्ष जल चढ़ा करके और भगवान से ये बात कह देता कि प्रभु हे भोलेनाथ, हे अवघ

दानी, हे दाता, मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति हीरे जवाहरात मुझे नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि हे प्रभु, आपके उभर से कभी मेरा विश्वास न टूटे, बस इतना, मुझे इतना ही कृपा चाहिए आपकी कि आपके ऊपर से मेरा कभी विश्वास न टूटे, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। प्रत्येक दिन जाकर के यही कहता था प्रभु। संत लोग ये कहा करते हैं कि बेटा, सबके दाता तो राम है।

इस संसार में सबके कोई दाता हैं तो भगवान है, ईश्वर है, हरि है, सबके दाता है। और वो रामदास प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर के यही कहता था कि प्रभु बस मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके ऊपर से मेरा विश्वास कभी टूटे नहीं, बस इतना ही आशीर्वाद मुझे चाहिए और कुछ चाहिए नहीं मुझे। प्रत्येक दिन सुना देता था और चल देता था। एक दिन उसके बेटी का तबीयत खराब हो गया और महाराज ऐसी परेशानी कि घर में खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, दवा कहां से करे, कैसे करे, किससे मांगे। इस परिस्थिति में लोगों की विश्वास कम हो जाता है, लेकिन इसने भगवान से सिर्फ मांगा प्रभु आपके ऊपर से मेरा भरोसा और विश्वास कभी टूटे नहीं। हम तो जाते तो बस यूं ही भगवान से कह देते कि हे प्रभु मुझे ये चीज, ये अभी कमी है, इसको पूरा करिए, और जिस दिन पूरा ना हो तो फिर उस चौखट को छोड़ ही देते। अरे कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो कह करके नहीं देते, अरे बेटा वो इतना कृपा कर देता है, इतना कृपा कर देता है कि तुम उसे संभाल करके रखना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। उस व्यक्ति के पास बेटी का तबीयत खराब हुआ, घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहां से इलाज कराए, कहां लेकर के जाए, तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास में भी जाएंगे तो पैसा लगेगा। उसने भरोसा रखा और भरोसा रख करके उसी रात्रि में अपने बेटी को गोद में उठा करके और मंदिर के लिए चला गया और जाकर के भगवान शिव के समक्ष फूट फूट करके रोने लगा। उसने कहा कि हे प्रभु इतनी परीक्षा, जो आज सुबह में खाए तो शाम के लिए कुछ भी नहीं, शाम को खाए रात्रि में सोने के बाद सुबह में घर में क्या मिले न मिले। इतनी परीक्षा, हे प्रभु किस जन्म का परीक्षा है। बीमार बेटी को लेकर के फूट फूट करके रोने लगा वो व्यक्ति, बहुत रोया, प्रभु मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं, कुछ भी मैंने आपसे नहीं मांगा, लेकिन हे ईश्वर मेरे बेटी का जान आपके हाथ में, मैंने जीवन में सच्चे आपसे प्रेम किया है, भक्ति किया है, मेरे बेटी को बचा लीजिए, आप मेरे बेटी को बचा लीजिए। सच्चा प्रेम किया है ना तो आप मेरे बेटी को बचा लीजिए। रात हो गई महाराज, मंदिर में कोई नहीं था, सुनसान मंदिर था, और इस समय में पहुंचा था कि उस समय में पुजारी जी भी गेट लगा करके चले गए थे, ताला बंद करके चले गए थे।
उसी जगह पे बैठा रहा। हे परमात्मा, मेरी बेटी को आप बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा है। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, उसने एक वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए बैठे हुए। उसने कहा कि बाबा, आप इतनी रात को आप यहां पे बैठे? कहा कि हां बेटा। बाबा, मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, सारी बात बताई, सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, भगवान तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, भगवान तो परीक्षा लेते हैं लेकिन भक्त का कभी हाथ नहीं छोड़ते, उसे कभी गिरने नहीं देते। परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उस परीक्षा में गिरने नहीं देते, उसके हाथ को थाम करके रखते हैं। कहा बेटा, तुम चिंता मत करो, अपने झोली से जड़ी बूटी निकाले और निकाल करके वहीं पे कूट पीस करके और कहे कि एक काम करो, मुझे आशा और भरोसा है ये दवा तुम अपनी बेटी को खिलाओ, ठीक हो जाएगा। और महाराज, रामदास तो यही भगवान से मांगा था कि मेरा भरोसा कभी टूटे नहीं, मेरा भरोसा में कभी कमी ना हो। जब हम अपने गोल के लक्ष्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं ना, तो पता नहीं उस लक्ष्य, उस मुकाम, उस स्थान पे पहुंच पाएंगे या नहीं, इसमें हमारी कमी हो जाती है। लेकिन भगवान से उसने यही मांगा था कि प्रभु, मेरा विश्वास कभी कम ना हो। बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से उस औषधि को लेकर के अपनी बेटी को खिलाया और वहां से चल दिया। घर पे आया, एक खुराक दिया, दो खुराक दिया, फिर सुबह का वही नियम था, आकर के वह जल चढ़ाना। बेटी की तबीयत में सुधार होने लगी, अच्छे होने लगी। कल होकर के जब मंदिर में आया तो पुजारी जी बैठे थे, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा करके उसने जाकर के पुजारी जी को प्रणाम किया और कहा, पुजारी जी, ये रात्रि में जो व्यक्ति, जो एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे, वो कहां चले गए? पुजारी जी कहे, कौन व्यक्ति, कहां का व्यक्ति? मैं तो यहां एकदम शाम होते ही भगवान का आरती कर लिया, ताला बंद करके मैं तो चला गया। मानो इसे झटका लग गया हो, पूरे शरीर रोमांच हो गया हो, नेत्रों से मानो कि अश्रु बह रहा हो। एक ऐसा चमत्कार, पुजारी जी, मैं आया तो एकदम पूरा खुला था मंदिर, मैं शेष रात्रि तक यहां बैठा रहा, एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति बाहर में आकर के बैठे और उन्होंने जड़ी बूटी मेरे बेटी के लिए दिया, मेरी बेटी का बहुत तबीयत खराब हो गया था और वही व्यक्ति दिए, आज मेरी बेटी बड़ी स्वस्थ है। पुजारी जी तो विश्वास ही नहीं कर रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे। बेटा, मैं कैसे मान लूं, मंदिर बंद था, ताले लगा करके मैं ये देख चाबी मेरे, मैं अपने साथ में लेकर के जाता था। रामदास दौड़े गया और जाकर के भगवान शिव लिंग से लिपट करके उसने कहने लगा कि प्रभु, इस रामदास की इज्जत को बचाने के लिए आपने इतनी रात्रि में इतनी कष्ट किया,
मैंने आया देखा पूरे दरवाजे खुले पड़े हैं, आपके समक्ष उतनी रात्रि तक मैं बैठा रहा। हे प्रभु, कोई दूसरा नहीं था और आपने दर्शन भी दिया तो मेरी बेटी के लिए। आंख से आंसू बह रहे हैं। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन देने की जरूरत नहीं थी, प्रभु आपने तो मेरी बेटी बनकर के मेरी गोद में ही अपना कृपा भेज देते। मेरी बेटी के लिए जब काही करनी थी तो बस मेरे गोद में भेज देते। आप मेरे लिए, मेरे बच्चे लिए आपने इतना विश्वास और भरोसा दिलाया और आकर कितने कष्ट परेशानी मेरे लिए की है प्रभु। फूट फूट करके वहीं पे रोने लगा। समझ गया कि जिसके सिर पे भगवान का हाथ हो उसकी जिंदगी में मुश्किलें तो आती है लेकिन वह कभी अकेला नहीं होता, कभी भी अकेला नहीं होता। मुश्किलें तो आती है लेकिन उसके साथ प्रभु और हरि जरूर होते, भगवान जरूर होते। किस रूप में भगवान होंगे ये पता नहीं। क्या भगवान से मांग करके शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? जो चराचर की नियंता है, पालन करता है, संहार करता है, उसके समक्ष मांगने में क्या शर्म नहीं आती? मुझे ये चीज दे दीजिए। और भगवान जब जगत के नियंता है, पालन करता है, सब सृष्टा है, जानने वाला है, तो क्या भगवान के समक्ष जाते तो क्या हमारी मन की बातें भगवान नहीं जानते क्या? क्या ये भगवान को पता नहीं है कि इसे ये वस्तुएं चाहिए? इसे भगवान को सब पता होता है, ईश्वर को सब पता होता है। ईश्वर को सब पता होता है, भगवान को सब पता होता है कि हमारे भक्त को क्या चाहिए, हमारे भक्त इसके लिए मैं क्या कर दूं। भगवान को अहर्निश ये पता है, अहर्निश पता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए। और भगवान तो भक्त के अधीन है।

दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति

जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहां कहां चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली,

0: माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है, पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है, माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए, घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है, वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई, कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है, आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई, अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था, उसने बेटे को समझाया, देख बेटा बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता, तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम निकालना जरूरी है, दिन भर के झगड़े से अच्छा है तो इसकी बात मान ले, यही बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे, तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी, घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का बहन भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई, डॉक्टर के पास गया, फीस पहले
1: कार्यक्रम सत्संग प्रभात
0: और वो सारी
1: बात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लग रहा है? प्रत्युत्तर के लिए जरूर अपना 9851177662 पर प्रत्युत्तर जरूर दें। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM आप सब मिलकर के श्रवण करते हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे और कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सुनकर के साथ दिए अपने अमूल्य समय दिए उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से जुड़े हुए हैं राम छत्री पंडित जी प्रगति नगर से। आपके स्वस्थता के लिए प्रभु से यही विनती है, प्रार्थना है, स्वस्थ हो जाएं और सदैव कृपा प्रभु की बनी रहे। आप नियमित श्रोता भी हैं और कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप अभी इस वक्त सुन भी रहे हैं। दीवाना पान भंडार गम्हरिया नहर चौक से श्याम सुंदर बैठा जी अभी सुन रहे हैं। प्रेम झा जी बिरगंज से सुन रहे हैं। जिज्ञासा झा जी बिहार से सुन रही हैं। राजकुमार माली जी प्रसौनी से, मनोज गुप्ता, आरुषि किराना पशल विश्रामपुर चार बलिरामपुर से आप सुन रहे हैं। राज मंगल सिंह जी नगवा से सुन रहे हैं। अभिषेक सिंह जी गोपालगंज से। MD अलहिम योगापटी उज्जवलिया से पश्चिमी चंपारण से आप सुन रहे हैं। तेज नारायण पटेल जी कल्याणपुर से, आप नियमित श्रोता भी हैं, इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। श्याम चौरसिया जी भी कल्याणपुर से सुन रहे हैं। आश मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टुकनी से सुन रहे हैं। अर्जुन कुमार जी बरेनिया से सुन रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz के तरंग के माध्यम से सुरेश राउत जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। सुरेश राउत जी भी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं राधे राधे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक लिए जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 के तरंग के माध्यम से, बने रहिए प्रभु की असीम जी के ऊपर। प्रभु से ही विनती है, प्रभु से ही प्रार्थना है।
2: अनेकता जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
5: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
2: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रति मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160002।
6: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक निकाली लो, गोड़ भगेल।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: एक चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हाईली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।

0: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
1: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज जल बिंदु के संपूर्ण इलाज
0: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा
1: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज
0: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज
1: नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली
0: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज
2: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667 98013 65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011 अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी
2: जी आप सही सुने कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
1: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
2: क्लार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
1: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
3: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
4: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी सवेरे के 7 बजे।
5: अरे चना भूज पीसी सतुआ बनावन।
6: अरे बुढ़ो हूँ तारा कौन काम धंधा बाकी ना हो खाली इतने सुनत रहला।
7: अरे टंडा जाना तू ऐसी ऐसी रेडियो नानू भाई भोजपुरिया एफएम जे सुने ला कान में लगाओ ते झूम जाला।
6: अरे खाली अपना के सुनवा आगे हमरा के सुनाई बा
7: चलो ना ही सुनला।

0: अरे बाप रे भाई, इतना सुंदर है एकदम कौन ना बाजत रहलख।
1: आहा सुना दिया चाल कर ले मुकेश भाई के शरमनाथ भाई के की सुना दी सब गांव लोग के। आहा भोजपुरिया ए भेम जय सुनेला
0: चुप जाला।

राम सिया को तुमने मिलाया, जाड़ी रावण की लंका, अक्षय कुमार को मार मिटाया, युद्ध का बजाया था डंका, युद्ध का बजाया

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबै छन हो, गोर भ गेल छी।
11: तेरे गोरे गोरे गाल नैन नचिले रेशमी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरी FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम
1: 92.8।
2: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार, मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
0: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
3: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
4: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
5: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इ सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
6: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
7: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
8: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
6: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9803065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिना हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
7: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
8: अरे देख ना बाबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
7: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में
9: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है।
7: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
10: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
7: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
9: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
7: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
9: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
11: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98-550-36-867, 98-013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98-013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
12: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 MHz में
1: अभी सवेरे के 8 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो
3: नए नए भजन और आरती के लिए HT भक्ति को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: करै छी ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै बुझलियै ने
1: जी हां गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब
0: तहन आब दोसर नहि बस गोरी गोरी क्रीम
1: निर्माता सारा भाई
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855 36 867 9803 65 011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803 65 011 अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल
4: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन, काथी भइल बा?
6: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
5: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
7: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
6: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, TB तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
5: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
8: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7291-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
9: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
10: देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
11: जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
12: जी, अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
13: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
11: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
14: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार, मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो, यही है कार्यक्रम सत्संग।

0: इंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में
1: शिव मेरी पूजा, शिव
0: प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
6: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
3: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
6: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
12: अरे देख ना बाबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
11: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
11: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
11: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
11: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 9 बजे।
1: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुमत रहे।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: अरे बाप रे माया, तना सुन्दर एकदम पकाउन न माजत रहलख।
1: आहा, सुनादी आउ चाल कर ले मुकेश भाई के, शरमनाथ भाई के, कि सुनादी सब गांव लोके। आहा, भोजपुरिया ए भेम जे सुनेला
0: चोर जाला।
2: ए बाप।

web.in.

0: पक्का करो तो
1: संख्या बोल ही बोलू
2: बोल।

0: क्यों लेट कर रही हो? वाया
1: पढ़े वाला लइकन के डूबलू चंपा रात में
2: छोड़ी दही दा
3: डाउनलोड फ्रॉम dhunweb.in
4: अनेकतामा एक यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
5: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
5: और 9097160602।
9: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज?
10: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
11: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
12: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
13: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमा क्यूर।
11: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
14: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक टा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD

0: फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न तथा यहाँ दोनों आदमी मिलके इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
1: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मु तैयारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
2: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
0: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
3: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868646।
4: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9813065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

नाच नाच

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियरा गई बा आहा तो झंझनाता का बाएकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के अथवा स्टोमाक्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमाक्यूर
0: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
5: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रउआ अपन लाठी।
6: अरे देख न बबी यार से कुछ लगते नहीं छे भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
5: चली चाचा जी रौरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
7: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
5: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज जल बिंदु के संपूर्ण इलाज
7: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
5: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज
7: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज
5: नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
7: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
8: अरे वाह भौजी अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक टा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36-867, 9803-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: www.radiomayabap.in।
1: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
2: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, आहा तो झंझनाता, का बायकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
1: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
4: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
1: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
6: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोड़ भगेल छी।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
9: सब लोगों मुझे जा, मैंने तैयार ना होगी।
8: ओहो।

0: आज भाव हो जाए दो
1: डाउनलोड dhoomweb.in
2: भोजपुरी आवाज भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz
3: करी खून दान दी जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 10 बजे।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोड़ भग।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी सबके साथ भोजपुरी FM 92.8 MHz।
1: डॉक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गई बा आहा तो झंझनाता का बाय कर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेड विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
0: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
7: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
5: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।
8: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रोआ अपन लाठी।
9: अरे देख ना बबी यार से कुछ लगते नहीं छे भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
8: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
10: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है
8: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज जल बिंदु के संपूर्ण इलाज
10: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
8: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज
10: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज
8: नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
10: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केड़िया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
11: अरे वाह भौजी अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: बहुत सकर हम तीन खाना निकाल के रखा था
1: खाना चाहिए खाना।
0: अरे हई का खाना कहाँ गई लोग

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
8: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लबी छन हो, गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868046।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803105555 और 9803108888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9813065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
10: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
11: गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी सवेरे के 11 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: मास्टर निर्गुणों के भाव लगा दी का
1: ना बे आश्रय दे
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहा स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
8: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850 36 867, 9803 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब,
0: तहन आप दोसर नहि बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो। FM 92.8 सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अब मिश्र जी कहाँ बड़े हो?
1: अरे वो रहे सरकार
0: यही हूँ। हाय भैया,

के प्यार में बानी ट्रेंड हो, तोहरा जैसन आइटम के कितना बजवले बानी बैंड हो। अरे यार छमिया।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में।
2: अभी दोपहर के 12 बजे।

0: तुम ठीक हो?
1: यस अंकल।
0: हाँ ऑफ कोर्स एवरीथिंग्स ओके पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मामा। चलो ज्योति।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाले,
2: आने वाले, आने वाले,
1: वो बेवफा, छलावट की,
2: झूठी।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मन

0: करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867 98013-65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरा मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटिया गंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बा एकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी दोपहर के 1 बजे।
2: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
8: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM 92.8।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013665011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013665011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM 92.8।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: 92.8 फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया एफएम।

0: हरी खूनदान दी जीवन दान टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी दोपहर के 2 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: छुआ, दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गीतवा।
1: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
2: डाक्टर साहब देखी न, मुँह पियरा गई बा, अहाँ तो झंझनाता, का भाएकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
5: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
2: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
4: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
6: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज़ आदर्श नगर।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लग छन, हो गोड़ भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9803065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में।
1: अभी दोपहर के 3 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बायकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9803065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: डाक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गई बा आहा तो झंझनाता का बाएकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स

0: प्रयोग करी साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी
1: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स
2: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
3: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
1: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
7: एक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
4: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602
8: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगी छन हो गोड़ भ गेल छी

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुमत रहे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी दोपहर के 4 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855036867, 9803065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए लक्ष्मीया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868646।
14: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब।
2: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
3: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
2: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
3: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
2: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
4: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
5: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: ये है भोजपुरिया FM 92.8 FM FM सुनते रहो सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर स्टोमाक्यूर।
8: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोड़ भगेल छी।

0: मोतिया क्रीम नहीं यूज करी थी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धूरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोणार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोणार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोणार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-6511। वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी संझिया के 5 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: एक चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
11: अरे देख ना बबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
10: चली चाचा जी रोरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
11: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
10: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
11: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
10: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
11: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
10: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
11: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
12: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धूरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
14: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36-867, 9813-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।

0: अभी आपने सुना था नी भोजपुरी FM 92.8 मेलघाट।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता का बाएकर इलाज
6: देखी। अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल छी।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज में। अभी संध्या के 6 बजल।
0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगेल छी।

0: वाला क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, जाए, किसी होटल में जाए, जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरदेव

0: वहाँ के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
3: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, अहाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
4: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, ये सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
5: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
1: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
3: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
5: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
6: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोज तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख न बबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
4: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
4: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
4: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
4: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
5: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868646।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

भजन में भाव है, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है,

0: हरी खूनदान दी जीवनदान टाइम से भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी सजिया के 7 बजल।

अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा करुणादि पर तत्पर ब्रह्म हो श्री कृष्ण की वांग्मय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथारसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र बरासर और अभी आप रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को।

बड़े आनंद चित्त होकर के आप और हम जहां भी रहें भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे। इस चराचर में जो भी हमें अच्छे कार्य हो रहे हैं सब प्रभु की प्रेरणा है, सब हरि की इच्छा है, सब प्रभु की प्रेरणा है। क्योंकि हरेक व्यक्ति यही कहता है कि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं, और बिल्कुल सत्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान मेरे साथ में ऐसे क्यों कर रहे हैं। भगवान इसलिए कर रहे हैं कि आपके किए हुए जो कुकर्म है उसका जल्दी प्रायश्चित हो जाए। इस संसार में रहिए, इस संसार में मस्त रहिए, खूब कमाइए, खूब धन अर्जन करिए, मौज मस्ती खूब करिए, लेकिन भरोसा कभी ईश्वर से आपका छूटना नहीं चाहिए। जिस दिन ईश्वर से आपका भरोसा छूट जाएगा ना, आपका धन दौलत संपत्ति हीरे जवाहरात सब बेकार हो जाएगा। कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन हरि के ऊपर भरोसा करके, परमात्मा के ऊपर भरोसा करके यदि हम अपने जीवन को यापन करते ना, तो जीवन पावन हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसी के लिए संसार वाले लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, भरोसा रखिए लेकिन कब बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ईश्वर कभी बदलेगा नहीं, आपके सहायता देने के लिए उत्तत्पर अहर्निश अपनी सेनाओं को लेकर के, अपने परिकरों को लेकर के बस तत्पर रहता है। क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को कभी दुखी होने नहीं देता, सोचता है कि मेरा बेटा खूब अच्छे से रहे, खूब बढ़िया से रहे, इससे कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसके जीवन में अहर्निश, इसके जीवन में अहर्निश हमारी कृपा बनी रहे। परमात्मा तो हर एक चाहता है, लेकिन जीव ईश्वर के ऊपर से भरोसा करना छोड़ देता है। अरे मैं हूं ना, सबसे बड़ा दुख का कारण यही बन जाता है कि भरोसा न करना। ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके कोई कार्य किया जाए। जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसी के लिए सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz के तरंग के माध्यम से आप जुड़े हैं। ईश्वर की भक्ति हम सबों के ऊपर बनी रहे, हम सबों के ऊपर बनी रहे, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा। बार
देखिए, भरोसा यदि हो ईश्वर के ऊपर तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आकर के आपको सहायता करते हैं। विश्वास और भरोसा तो होना ही चाहिए। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। भगवान शिव का बड़ा भक्त था। यह नियम था उसके कि प्रत्येक दिन नियमानुसार से कोई कार्य हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नियमानुसार से भगवान शिव को जाकर के जल अर्पण करता था। घर में कोई खर्ची नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, फिर भी रखता कि प्रभु भले घर में खाने के लिए नहीं लेकिन जो शेष समय बचेगा उसमें हम कमा करके घर का लालन पालन कर लेंगे। पूर्ण भरोसा था। रोज शिवलिंग पर जो है जाकर के जल चढ़ाता था, रोज शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाता था। क्या भगवान से उसने धन मांगा, संपत्ति, हीरे जवाहरात? नहीं, भगवान के समक्ष जल चढ़ा करके और भगवान से ये बात कह देता कि प्रभु हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे दाता, मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति हीरे जवाहरात मुझे नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि हे प्रभु आपके उभर से कभी मेरा विश्वास न टूटे, बस इतना मुझे इतना ही कृपा चाहिए आपकी कि आपके ऊपर से मेरा कभी विश्वास न टूटे, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। प्रत्येक दिन जाकर के यही कहता था, प्रभु संत लोग ये कहा करते हैं कि बेटा सबके दाता तो राम है।

इस संसार में सबके कोई दाता हैं तो भगवान है, ईश्वर हैं, हरि हैं, सबके दाता है। और वो रामदास प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर के यही कहता था कि प्रभु बस मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके ऊपर से मेरा विश्वास कभी टूटे नहीं, बस इतना ही आशीर्वाद मुझे चाहिए और कुछ चाहिए नहीं मुझे। प्रत्येक दिन सुना देता था और चल देता था। एक दिन उसके बेटी का तबीयत खराब हो गया और महाराज ऐसी परेशानी कि घर में खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, दवा कहां से करे, कैसे करे, किससे मांगे। इस परिस्थिति में लोगों की विश्वास कम हो जाता है, लेकिन इसने भगवान से सिर्फ मांगा प्रभु आपके ऊपर से मेरा भरोसा और विश्वास कभी टूटे नहीं। हम तो जाते तो बस यूं ही भगवान से कह देते कि हे प्रभु मुझे ये चीज, ये अभी कमी है, इसको पूरा करिए, और जिस दिन पूरा ना हो तो फिर उस चौखट को छोड़ ही देते। अरे कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो कह करके नहीं देते, अरे बेटा वो इतना कृपा कर देता है, इतना कृपा कर देता है कि तुम उसे संभाल करके रखना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। उस व्यक्ति के पास बेटी का तबीयत खराब हुआ, घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहां से इलाज कराए, कहां लेकर के जाए। तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास में भी जाएंगे तो पैसा लगेगा। उसने भरोसा रखा और भरोसा रख करके उसी रात्रि में अपने बेटी को गोद में उठा करके और मंदिर के लिए चला गया और जाकर के भगवान शिव के समक्ष फूट फूट करके रोने लगा। उसने कहा कि हे प्रभु इतनी परीक्षा, जो आज सुबह में खाए तो शाम के लिए कुछ भी नहीं, शाम को खाए रात्रि में सोने के बाद सुबह में घर में क्या मिले न मिले। इतनी परीक्षा, हे प्रभु किस जन्म का परीक्षा है। बीमार बेटी को लेकर के फूट फूट करके रोने लगा वो व्यक्ति, बहुत रोया, प्रभु मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं, कुछ भी मैंने आपसे नहीं मांगा, लेकिन हे ईश्वर मेरे बेटी का जान आपके हाथ में, मैंने जीवन में सच्चे आपसे प्रेम किया है, भक्ति किया है, मेरे बेटी को बचा लीजिए, आप मेरे बेटी को बचा लीजिए। सच्चा प्रेम किया है ना तो आप मेरे बेटी को बचा लीजिए। रात हो गई, महाराज मंदिर में कोई नहीं था, सुनसान मंदिर था, और इस समय में पहुंचा था कि उस समय में पुजारी जी भी गेट लगा करके चले गए थे, ताला बंद करके चले गए थे।
उसी जगह पे बैठा रहा। हे परमात्मा, मेरे बेटी को आप बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा है। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, उसने एक वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए बैठे हुए। उसने कहा कि बाबा, आप इतनी रात को आप यहां पे बैठे हैं? कहा कि हां बेटा। बाबा, मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, सारी बात बताई, सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, भगवान तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, भगवान तो परीक्षा लेते हैं लेकिन भक्त का कभी हाथ नहीं छोड़ते, उसे कभी गिरने नहीं देते। परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उस परीक्षा में गिरने नहीं देते, उसके हाथ को थाम करके रखते हैं। कहा बेटा, तुम चिंता मत करो, अपने झोली से जड़ी बूटी निकाले और निकाल करके वहीं पे कूट पीस करके और कहे कि एक काम करो, मुझे आशा और भरोसा है ये दवा तुम अपनी बेटी को खिलाओ, ठीक हो जाएगा। और महाराज, रामदास तो यही भगवान से मांगा था कि मेरा भरोसा कभी टूटे नहीं, मेरा भरोसा में कभी कमी ना हो। जब हम अपने गोल के लक्ष्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं ना, तो पता नहीं उस लक्ष्य, उस मुकाम, उस स्थान पे पहुंच पाएंगे या नहीं, इसमें हमारी कमी हो जाती है। लेकिन भगवान से उसने यही मांगा था कि प्रभु, मेरा विश्वास कभी कम न हो। बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से उस औषधि को लेकर के अपनी बेटी को खिलाया और वहां से चल दिया। घर पे आया, एक खुराक दिया, दो खुराक दिया, फिर सुबह का वही नियम था, आकर के जो है जल चढ़ाना। बेटी की तबीयत में सुधार होने लगी, अच्छे होने लगी। कल होकर के जब मंदिर में आया तो पुजारी जी बैठे थे, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा करके उसने जाकर के पुजारी जी को प्रणाम किया और कहा, पुजारी जी, ये रात्रि में जो व्यक्ति, जो एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे, वो कहां चले गए? पुजारी जी कहे, कौन व्यक्ति, कहां का व्यक्ति? मैं तो यहां एकदम शाम होते ही भगवान का आरती कर लिया, ताला बंद करके मैं तो चला गया। मानो इसे झटका लग गया हो, पूरे शरीर रोमांच हो गया हो, नेत्रों से मानो कि अश्रु बह रहा हो। एक ऐसा चमत्कार, पुजारी जी, मैं आया तो एकदम पूरा खुला था मंदिर, मैं शेष रात्रि तक यहां बैठा रहा, एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति बाहर में आकर के बैठे और उन्होंने जड़ी बूटी मेरे बेटी के लिए दिया, मेरी बेटी का बहुत तबीयत खराब हो गया था, और वही व्यक्ति दिए, आज मेरी बेटी बड़ी स्वस्थ है। पुजारी जी तो विश्वास ही नहीं कर रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे। बेटा, मैं कैसे मान लू, मंदिर वंदिर बंद था, ताले लगा करके मैं ये देख चाबी मेरे, मैं अपने साथ में लेकर के जाता था। रामदास दौड़े गया और जाकर के भगवान शिव लिंग से लिपट करके उसने कहने लगा कि प्रभु, इस रामदास की इज्जत को बचाने के लिए आपने इतनी रात्रि में इतनी कष्ट किया,
मैंने आया देखा पूरे दरवाजे खुले पड़े हैं, आपके समक्ष उतनी रात्रि तक मैं बैठा रहा। हे प्रभु, कोई दूसरा नहीं था और आपने दर्शन भी दिया तो मेरी बेटी के लिए। आंख से आंसू बह रहे हैं। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन देने की जरूरत नहीं थी, प्रभु आपने तो मेरी बेटी बनकर के मेरी गोद में ही अपना कृपा भेज देते। मेरी बेटी के लिए जब कृपा ही करनी थी तो बस मेरे गोद में भेज देते। आप मेरे लिए, मेरे बच्चे लिए आपने इतना विश्वास और भरोसा दिलाया और आकर कितने कष्ट परेशानी मेरे लिए की है प्रभु, फूट फूट करके वहीं पे रोने लगा। समझ गया कि जिसके सिर पे भगवान का हाथ हो उसकी जिंदगी में मुश्किलें तो आती है लेकिन वह कभी अकेला नहीं होता, कभी भी अकेला नहीं होता। मुश्किलें तो आती है लेकिन उसके साथ प्रभु और हरि जरूर।

दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति

जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया,

अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहां कहां चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली,

0: माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है, पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे, माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है, माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है, वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई, कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है, आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई, अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता, तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर बहम हो गया है तो बहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले, यही बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे, तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी, घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का बहन भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई, डॉक्टर के पास गया, फीस पहले
1: कार्यक्रम सत्संग प्रभात
0: और वो सारी बात
1: रेडियो भोजपुरी एफएम 98.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात को कैसा लग रहा है, प्रत्युत्तर के लिए जरूर अपना 98.1 17762 पर प्रत्युत्तर जरूर दें। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी एफएम आप सब मिलकर के श्रवण करते हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे और कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सुन करके साथ दिए अपने अमूल्य समय दिए उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से जुड़े हुए हैं राम छत्री पंडित जी प्रगति नगर से। आपके स्वस्थता के लिए प्रभु से यही विनती है, प्रार्थना है, स्वस्थ हो जाएं और सदैव कृपा प्रभु की बनी रहे। आप नियमित श्रोता भी हैं और कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप अभी इस वक्त सुन भी रहे हैं। दीवाना पान भंडार गम्हरिया नहर चौक से श्याम सुंदर बैठा जी अभी सुन रहे हैं। प्रेम झा जी बिरगंज से सुन रहे हैं। जिज्ञासा झा जी बिहार से सुन रही हैं। राजकुमार माली जी प्रसौनी से। मनोज गुप्ता आरुषि किराना पशल विश्रामपुर चार बलिरामपुर से आप सुन रहे हैं। राज मंगल सिंह जी नगवा से सुन रहे हैं। अभिषेक सिंह जी गोपालगंज से। एमडी अलहिम योगापटी उज्जवलिया से पश्चिमी चंपारण से आप सुन रहे हैं। तेज नारायण पटेल जी कल्याणपुर से। आप नियमित श्रोता भी हैं, इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। श्याम चौरसिया जी भी कल्याणपुर से सुन रहे हैं। आश मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टुकनी से सुन रहे हैं। अर्जुन कुमार जी बरेनिया से सुन रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से सुरेश रावत जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। सुरेश रावत जी भी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं राधे राधे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक लिए जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। प्रभु की सदैव असीम अनुकंपा यही विनती है, प्रभु से यही प्रार्थना है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
0: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
3: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
4: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
5: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
6: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
7: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
6: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
8: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी होने हैली रउआ अपन लाठी।
9: अरे देख न बबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
8: चली चाचा जी, रौरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
10: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
8: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
10: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
8: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
10: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
8: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिले।
10: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
11: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
12: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
11: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
13: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
12: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
11: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
14: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
15: अरे वाह भौजी, अरे की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भ गेल छी।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धूरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार सब करेगा वही जो है पालनहार मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात जितेंद्र पाराश्र के साथ में रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी संजिया के 8 बजे
2: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
10: अरे देख ना बबी, याद से कुछ लौटे नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
9: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
10: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
9: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
10: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
9: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
10: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
9: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
10: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
11: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचे में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरी FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868046।
14: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल छी।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान, भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी रात के 9 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: अभी आपने सुना था
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोर भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एक निश्चित उपहार दिल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: और अभी आपने सुना था
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: अपन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
1: अब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
2: तहन आप दोसर नहीं बस गोरी गोरी क्रीम।
0: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन काथी भइल बा।
4: ए रामू भैया राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा हाथ पैर भी सुन हो गइल बा कहाँ इलाज कराई।
3: सुनो बबी देर ना करो इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी इहा के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न तथा इहा दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ इहा लकवा ब्रेन हेमरेज ब्रेन ट्यूमर गर्दन के दर्द कमर दर्द साइटिका माइग्रेन मिर्गी के इलाज दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी मोबाइल नंबर 7201-55466 62-5523 58-579 आ 98-525-68-46।
7: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
9: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
10: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867 98013-65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
11: नमस्ते आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8 सुनते रहो सुनाते रहो।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोर

0: अभी आपने सुना था नी खुशबूरी FM 92.8
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160।
5: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियर आ गई बा हाँ तो झनझनाता का बा एकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूर जौन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोड़ भगेल छी।

0: कटिया क्रीम नै युज करै छी। ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोजे तानी हो ने हैली रउआ अपन लाठी।
4: अरे देख न बबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रौरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
5: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
5: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
5: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
5: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।